दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर। ओ लाल मेरे, ओ लाल मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर ईशा भाग कलंदर।